0: चक्रन करन को करन कर सी कर काग मुसा की कटन खुल खुल तू कर काटा बखल बियाल माला सालम
1: ये गबा
0: दे आलो तो सही।